रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला साँझको 6 बज्यो। रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 6 बज्यो।